0: आईएमएस प्रभु वेस्टर्न यूनियन पृथ्वी क्रिस जस्ता मनी ट्रांसफर विश्व को जुनसुक पठाई पैसा तुरंत भुगतान दीने व्यवस्था
1: फुलबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड वालिङ फकुन्दे
2: संपर्क फोन नंबर 0363414624।

0: सुनत नाम दस बजे
1: ए समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच गरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।

0: ऑपरेशन दे जाएगा और ना यो तो सात से एक से पाँच थोपलो चार मेगा हर्ट्ज को रेडियो आदि खोले रहते हैं क्या हो?
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको बोक्लायो तपाईं यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला एफएम 105.4 मेगाहर्ट्ज।

0: समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच घरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
1: ठाउँ।

बोलो श्री शिव शंकर भोलेनाथ को, बोलो श्री माता पार्वती को, हरे है मेरे भगवान मनुष्य को जिंदगानी।

बोलो श्री पशुपतिनाथ को। श्रद्धालु भक्तजन, यह संसार में केवल दुईटा चीज मात्र सत्य रहेछन्, शाश्वत रहेछन्। एउटा जन्म अनि अर्को मृत्यु, अरु